0: रेडियो साइमन 89.8 मेगाहर्ट्ज
1: साहिनो समय सूचक अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो। इट्स 2 PM।

मेलमिलाप टोलबाट 2105 प्रदान गर्नुभएको छ लालबहादुर श्रेष्ठजी अथवा प्रतिनिधिज्यू। उमा कान्ति पाण्डे भरतपुर 12/2020 उमा कान्ति पाण्डेजी। सुशीला पाठक भरतपुर 12 मुनाल चोक 1060 सुशीला पाठकजी। रसिद हातमा छ लिएर आउनुहोला उद्घोष गरिएको रसिदको लागि रुद्राक्षको लागि अथवा आज बिहान आएर यहाँ रसिद काटेर उठेर यहाँ नजिक आउनुहोला बिचबाट उठेर यहाँसम्म आउँदा ढिला हुन्छ अनि पालो कट्न सक्छ। चिनमाया एवं नन्द सर चिनमयानन्द सरस्वती 1005 चिनमयानन्द सरस्वतीजी महाराज हरिहर आश्रमबाट हो जस्तो लाग्छ मलाई। उत्तरा भट्टराई भरतपुर 12/1111 उत्तरा भट्टराईजी। कृष्ण प्रसाद सापकोटा भरतपुर 5/1005 कृष्ण प्रसाद सापकोटा। चोलिन्द्र भट्टराई काठमाडौँ 6 कृपया 1000 भन्दा तलका नपठाउनु होला। रुद्राक्ष भजन समूह भरतपुर 9/3500 रुद्राक्ष भजन समूह। खड़क बहादुर अधिकारी खिमादेवी अधिकारी भरतपुर 7/1120 ऋषि कुमार छेत्री गैंडाकोट 1/1115 तुलसी कणेल महेन्द्र कणेल हेटौडाबाट 1115 रमेश अधिकारी शोभा अधिकारी भरतपुर 2/1115 शोभाकर अधिकारी भरतपुर 14/1115 दिदी आउँछ है पाले अब आइहाल्यो। धनकला घिमिरे रत्नगर 6/सौराहा 1205 ईश्वरी प्रसाद खनाल भरतपुर 7/1155 ईश्वरी प्रसाद खनालजी। बबिता गौतम राप्ती 1/1125 पार्वती गौतम राप्ती 1/1125 सबको आउँछ है नापिनु होला। विद्या अधिकारी भरतपुर 10 विद्या अधिकारीज्यू भरतपुर 10 1115 दमन्ता ढकाल भरतपुर 9/1115 दमन्ता ढकालजी। एकजनाकोमा एकैजना आइदिनु होला रुद्राक्ष लगाउनको लागि कृपया। विष्णुमाया घिमिरे भरतपुर 11/1120 विष्णुमाया घिमिरे। मितेरी आमा समूह भरतपुर 2 क्षेत्रपुर 7105 मितेरी आमा समूह। उमा देवी सापकोटा भरतपुर 7/1125 उमा देवी सापकोटा। कमला थापा भरतपुर 7/1115 कमला थापा। बुद्धिविलास अर्याल भरतपुर 4 लक्ष्मीपुर 1010 बुद्धिविलास अधिकारी अर्यालज्यू। भगमात्रा कटुवाल भरतपुर 10 भोजाड 1115 कृष्ण बहादुर कटुवाल भरतपुर 11 भोजाड 1115 दुर्गा पराजुली भरतपुर 10/1115 हरिमाया ढकाल देवघाट 5 तनौ 1005 हरिमाया ढकाल। आउँछ आउँछ नातिन नाम आएको सबको आउँछ। रेखा सीमा गैंडाकोट 1/1005

आजी कई खोजू किरी लाई एक बेई भूल कोई पानी जुन तारा लाई हिरेरा कलती नी जो पानी दियो मुनी आधारो छा खई कसको भूल।